सुन, रेंगता कीड़ा तू खड़ा सांप बन के, कान भर के मिलेगा ना कुछ, मुंह खोले जब ही तू घान बके, एहसान करते तुझ पे तेरे दोस्त करता पीठ पीछे बातें, तू एहसान फरामोश, योग भोग सब ढूंढ तुझे कल्पना का रोग, दिखावे का सज्जन तुझे चाहिए शारीरिक भोग, तू नीच प्राणी में तेरा प्राणा कर दूंगा।